0: chicken, and I'm here to tell you.
1: नेपालीपन को आभास, नेपाली मन को आवाज.
2: सुन हिउँ चुली पहाड़ पहरा, सुन भीर पागल एक बेसी सारा सुन.
1: स्वदेश FM 93.2 मेगाहर्ज.

0: टाइम चेक इस समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5550 7071 र 9855 7053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0556 4940 4395 580 र 9855 26 440
3: It's 10 o'clock अहिले 10 बजेको छ।

0: सपक्ष न विपक्ष
1: सधैं निष्पक्ष
0: निष्पक्ष निष्पक्ष
2: स्वदेश एफएम 93.2 मेगाहर्ज।